0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाए।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Mixing in the house.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 7:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 102.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate. TNC apply.
5: Call 800 Alfred. Good health is rewarding. Now your health insurance is too. Buy from insurancemarket.ae and get My Alfred Premium free for 1 year. Insurancemarket.ae.
6: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.

0: Got an insurance quote? Before you say yes, check insurancemarket.ae. One quick comparison could make all the difference. Call 800-ALFRED.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी, आपके साथ। It's 11th of September, Friday है, and कितनी नोटिस करने वाली बात है ना यार, कि मंडे और फ्राइडे में चाहे सिर्फ दो ही दिन का फर्क है, लेकिन मंडे को आ मूड इज लाइक फुल ऑन व्हील, फुल ऑन वर्क, टास्क टू डू, लेकिन फ्राइडे आते ही जो हम पीकू बन जाते हैं, पूकी बन जाते हैं, वाइब एकदम चेंज हो जाती है। बाय द वे, दिस वीकेंड द टेम्परेचर इज गोना हिट 46 डिग्रीज विद हाई ह्यूमिडिटी, फॉग भी आ सकती है, तो जो जितने भी लोग बीमार चल रहे हैं वो और बीमार ना हो जाएं, या फिर बाकी लोग बीमार ना हो जाएं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड देयर इज मोर कमिंग अप योर वे। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल सेकंड रनवे टू ओपन अप बाय एंड ऑफ 2027, बात करेंगे इस पर। टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: आज सुबह उठते ही लग रहा था कि यार 5:30 नहीं 7 बज रहे। इट वाज क्वाइट सनी आउटसाइड फॉर 7 AM एज वेल। 33 डिग्रीज है फिलहाल बाहर विद ह्यूमिडिटी लेवल 60%।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: यो हनी सिंह एंड एक बिटल का ट्रैक सॉन्ग का नाम था आदत, जो कि फिलहाल हमें लग चुकी है यार दुबई से दुबई इट एक्सपेक्ट करने की।
1: The Big Breakfast on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। It's 11th of September, Friday, and what a day to plan your travel and trips. Basically, airplanes का address अब बदल जाने वाला है, बदल भी नहीं, plus one add हो जाने वाला है। Dubai is getting ready for another aviation mega move. Basically, Dubai's Al Maktoum International Airport या फिर DWC एक step और आगे जा रहा है to become Dubai's main aviation hub. First major phase jo hai that is designed to handle 150 million passengers a year in the early 2030s. And just not that, this could be the first ever airline to start shifting part of its operation from Dubai to DWC. Of course, eventual plan to aur bhi bada hai, 5 runways and capacity for up to 260 million passengers annually. I'm telling you yaar, Dubai is and its vision, heartthrob hai yaar, dil le jata hai. लेकिन ये आ कब रहा है, शुरू कब हो रहा है, ये दीदार कब होगा इसका? The end of 2027 it is, लेकिन अगले साल ही 5 से 6 aircrafts शुरू हो जाएंगे। Let's see how it goes. You keep it locked to Big 106.2.

0: Bollywood. अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
1: Schools starting soon and we need a car
2: and books, uniforms, everything.
1: Don't worry, I found the best back to school rent a car offer on selfdrive.ae. Self drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. InsuranceMarket.ae.
0: The Big Breakfast, brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Weekend ke plans build up ho rahe hain, so is the traffic as of now. E11 Sheikh Zayed Road par aapko traffic milega around Business Bay, downtown on the World Trade Center. E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road par aapko JVC Albarsha South wali side traffic mil sakta hai. E44 par Alkhuz and Russell Khore par bhi congestion milega aapko. Of course Dubai Sharjah routes par bhi acha khasa congestion milega. E11 through Al Nada, Alqaziz and Al Mamzar. एयरपोर्ट वाली साइड भी मिलेगा एंड अलगरूद पर भी आपको कंजेशन मिल सकता है. कहीं और फंसे हो लेट मी नो. 800-1062.
0: गेट रेडी फॉर स्कूल विद selfdrive.ae. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम्स अ मंथ फ्लैट रेट. टीएनसी अप्लाई. बिग 106.2.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कम पैदा हो गया।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। इट्स 11th ऑफ सितंबर फ्राइडे एंड फ्राइडे एक लौता ऐसा दिन होता था यार स्कूल का भी ना कि मन करता था छुट्टी कर लेते हैं यार, दो दिन की छुट्टी है, एक और हो जाती तो क्या हो जाता, लेकिन पेरेंट्स वर ऑलवेज लाइक कि फ्राइडे तो रह गया है फिर तो दो दिन छुट्टी है आराम से सो जाना। लेकिन यार फ्राइडे की छुट्टी का जो माहौल बनता था ना वाइब कि आज अगर मैंने मना लिया पेरेंट्स को कि मुझे आज की छुट्टी चाहिए चाहिए तो मेरी तो तीन दिन की छुट्टी हो जाएगी। आप देख रहे हो बचपन से लेके बड़े होने तक हमारा लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग की चल रही होती है। Having said that, now you can get school ready with self-drive, rent a car starting from 1099 dirham per month, flat rate for the year, zero penalty on early returns. So basically, school तक की राइड स्मूथ हो जाएगी और ये जो बहाने हैं ये तो एकदम निल हो जाएंगे। Keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 8:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Already bought insurance somewhere else? Maybe don't check insurancemarket.ae now. You might wish you had checked before. Next time, compare first. 800 Alfred.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी, आपके साथ। इन बहुत लोगों की दिन की शुरुआत ना कड़क या कॉफी के बिना नहीं होती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मत पियो, इट्स अनदर स्टडी दैट सेज देयर इज अ थिंग कॉल्ड टू हॉट। और मैं वेदर की बात नहीं कर रही, मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। एंड दैट इज अ मेजर स्टडी हैज फाउंड दैट रेगुलरली ड्रिंकिंग बेवरेजेस एट 65 डिग्रीज और हॉटर इज लिंक्ड टू अ सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क ऑफ सीरियस डैमेज टू योर ईसोफेगस। एंड बहुत बार होता है यार कि आप पहला सिप लेते हो एंड यू गो लाइक ओ माय गॉड ओ माय गॉड, लेकिन जुबान थोड़ी सी हल्की जल जाती है, लेकिन तब भी वो लाइक क्या, अब तो हो ही गया यार, अब तो हम पी सकते हैं। पेशेंस माय फ्रेंड, पेशेंस। आपकी कड़क कब ये बन जाएगी? By the way, you tell me, you are a coffee person or a chai person? 800-1062 it is. Keep it locked to Big 106.2, the Beat of Bollywood.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे हैं सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दूध को दाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरवराहट, थरथराहट, टपको पहाड़,

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में हूँ अवनी आपके साथ. It's Friday 11th of September and आज थिएटर्स में दो मूवीज रिलीज हो रही हैं. The Clash. One is मनोज बाजपेयी's The Last Man in Tower and another one is सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार स्टारर फिल्म हैवान. दोनों ही बहुत ही इंट्रिगिंग लग रहे हैं. इनफैक्ट हैवान तो इट्स अ क्राइम थ्रिलर एंड बहुत ही अतरंगी रोल भी कर रहे हैं सैफ अली खान. ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ ब्लाइंड मैन एंड क्राइम थ्रिलर है ये. सॉल्व कैसे होता है मिस्ट्री ये ऑफकोर्स सिनेमा में पता लगेगा आज. लेकिन द लास्ट मैन इन टावर ऑल्सो हैज बोमन ईरानी हियर विद दिव्या दत्ता एंड द कास्ट इज सो अमेजिंग. एंड मनोज बाजपेयी की हर एक फिल्म यार मैं तो सिर्फ उनके लिए देखती हूँ, मतलब फॉर हिज ओन एक्टिंग. लेकिन ये सिनेमा ये जो है आज दो फिल्में कैसे पूरी कर पाऊंगी यार मैं. मोटिवेशन ही आ रही है लेकिन टाइम वक्त वो कब आएगा यू टेल मी. 800-1062 पे कॉल करके विच वन इज गोना यू वॉच, हैवान या फिर लास्ट मैन इन द टावर. हैवान या लास्ट मैन इन द टावर. 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Europa. Big.
1: एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate. TNC apply.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: E311 पर अराउंड JBC अलबर्शा साउथ स्ट्रेच पर आपको काफी कंजेशन मिल जाएगा विद E11 ऑन अलगजीज अलनादा टुवर्ड्स दुबई शारजा बॉर्डर। सेंट्रल दुबई में बिजनेस बे एंड अलखेल रोड पर अच्छा खासा कंजेशन मिल जाएगा आपको, विच एक्सटेंड टुवर्ड्स रासल खोर एंड नादल शिबा रोड्स अराउंड DXB एंड अलगरूद, यहाँ पर आपको काफी बिजी ट्रैफिक मिलेगा। इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स दुबई शारजा business bay or towards the airport, get yourself little extra time. Until then, keep it locked to Big 106.2.
6: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: breakfast on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ आपके साथ अवनी. एंड फ्राइडे रात को ना यार मन करता है कि हम वीकेंड ना अभी ही सेलिब्रेट कर लें. एंड वन थिंग इज ऑलवेज देयर जब भी हम कुछ सेलिब्रेशन की बात करते हैं, दैट्स फूड. कैसे भूल सकते हैं यार उसे. And I'm gonna recommend you one crazy thing to celebrate your weekend. That's Papa John's. They have launched its new oven toasted sandwiches in UAE, crafted on sourdough style ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's made to be heard. They've got 6 bold varieties in total, including pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Basically, आप उनकी app पर जाकर download करके sandwiches order कर सकते हो. Better ingredients, better pizza. Papa John's. अभी नहीं खाना खाएंगे तो कब खाएंगे यार. Coming up next is the big check into Germany. Keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 9:06।
2: Bollywood.

0: 800 Alfred. Buying insurance is easy. It's when something goes wrong that your choice really matters. That's when insurancemarket.ae delivers.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज द बिग चेक इन टू जर्मनी. अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं किया है, करना है आपको बिग चेक इन स्पेस योर नेम टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062. इट्स फ्राइडे 11th ऑफ सितंबर एंड कौन फ्राइडे को वीकेंड पर ट्रिप ट्रैवल प्लान नहीं करता यार. मुझे पता है वेकेशन बहुत बहुत पुरानी हो चुकी है ना, नहीं लेने की जरूरत हो चुकी है. Well, even if it's not been long, this is a chance for an all-expense-paid trip. Message karna hai 0543091062 par. Main karungi aapko call, khelenge ek amazing si game. And until then, keep it locked to Big 106.2.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
2: स्कूल्स स्टार्टिंग सून एंड वी नीड अ कार
3: एंड बुक्स, यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग।
2: डोंट वरी, आई फाउंड द बेस्ट बैक टू स्कूल रेंट अ कार ऑफर ऑन सेल्फ ड्राइव डॉट ए। सेल्फ ड्राइव कार्स रेंटिंग फ्रॉम जस्ट 1099

0: rate.
1: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
2: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
3: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
4: हाय शिवानी, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी, पर वो सिर्फ म्यूजिक सुनाऊंगी, ठीक है? आपको वो सॉन्ग गेस करना है।
3: ओके। ये घुंघरू टूट गए।
4: ओह माय गॉड, 2 seconds, भाई 2 seconds भी नहीं लिए शिवानी ने, वाओ। देख लो, अब जनरल नॉलेज भी होती है तब भी इंसान जर्मनी जा सकता है, क्या पता क्या ना पता। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। एग्जैक्टली क्या किया था आपने, बताना फिर से।
3: सिर्फ बिग चेक इन, मेरा नाम भेजा था व्हाट्सएप नंबर पे आपके।
4: और बहुत सारे मैसेजेस शिवानी ने भेजे, इनफैक्ट जब वो टाइप कर रही थी मैंने उनको तभी कॉल बैक कर दिया।
3: यस,
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM द बिग मिक्स विद अवनि, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: Morning rush is still there. E11 Sheikh Mohammed bin Zayed Road par around JVC Albarsha South and ऑफ कोर्स दुबई शारजा कॉरिडोर वाली साइड आपको काफ़ी कंजेशन मिल जाएगा। विद दैट ऑन E11 देरा अलगसेज अलनादा एंड अलमजार पर आपको काफ़ी ट्रैफिक मिल जाएगा। इन सेंट्रल दुबई कीप एन आई ऑन बिजनेस बे, अलखील रोड, अलजदफ एंड रसल खोर, अलगरूद एंड DXP वाली साइड भी आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ेगा। अगर कहीं और फंसे हो ट्रैफिक में, लेट मी नो 800-1062 पर कॉल करके।
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज द टाइम फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी. आज मैंने कॉल किया है खुश को. हाय खुश.
2: हाय, गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे थे आप?
2: मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ऑन द वे टू द ऑफिस.
1: तो बस भाई थोड़ा दो मिनट पार्क करके फिर हम बात कर लेते हैं, कॉन्टेस्ट खेल लेते हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: क्या टाइमिंग है आपका ऑफिस का?
2: ऐसे तो 9 बजे है बट आज फ्राइडे तो थोड़ा लेट चलता है.
1: या आज तो लेट चलेगा, आज तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बॉस भी कुछ नहीं बोलेगा, वो भी खुद भी लेट आएंगे. नहीं
2: हाँ.
1: ओके, मैं आपको एक म्यूजिक सुनाऊंगी गाने का, आपको गेस करना है वो गाना कौन सा है. आर यू रेडी?
2: श्योर.
1: आर यू रेडी का मतलब आपने बैग्स पैक कर लिए जर्मनी के लिए?
2: कर दिए, बस रेडी है सब वीजा लगाना.
1: ओह ओके, लेट्स सी, आई एम गोना प्ले द सॉन्ग. फुल फ्राइडे वाइब वाला गाना है.
2: जी जी.
1: व्हाट इज इट? गेस किया?
2: इसको दीवाने.
1: ओहो करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. खुश, एक डायलॉग मुझे भी बोलना है आज. खुश तो बहुत होगे तुम. आपका नाम जो है रजिस्टर हो चुका है. एंड कैन यू टेल अस कि आपने ये पार्टिसिपेट करने के लिए किया क्या?
2: मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे आपके नंबर पे मैसेज किया बिग 106.2 के और उस पे सिर्फ लिखा बिग चेक इन और अपना नाम.
1: और फिर मैं ऑफिस से लेट हो रहा था तो मैंने फिर कॉल करके थोड़ा सा और लेट पे वाली खुद को, क्या ही जा रहा है इसमें, इस चीज के लिए तो वक्त ही वक्त है.
2: थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा.
1: जर्मनी का सवाल है यार, जर्मनी का सवाल है, कम ऑन. ओके, थैंक यू सो मच खुश. हैप्पी वीकेंड बाय द वे.
2: थैंक यू, यू टू, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.
1: अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है इन बिग चेक इन टू जर्मनी, ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, पैकेज सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
1: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
6: सेंट्रल दुबई में बिजनेस बेल खेल रोड अलजतफ एंड रसल कोर इज द एरियाज जहां पर आपको ध्यान रखना है, कंजेशन काफी मिल जाएंगी। एंड ऑफकोर्स E11 E311 इफ यू ट्रैवलिंग टुवर्ड्स शारजा आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ेगा। कहीं और फंसे हो लेट मी नो 800-1062 पे कॉल करके।
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: Shreya Ghoshal, APTL ka track full on Friday vibes.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड देयर वाज दिस 80s ट्रेंड गोइंग ऑन इंस्टाग्राम लेकिन देयर इज वन मोर ट्रेंड आफ्टर दिस ट्रेंड जो ट्रेंड कर रहा है व्हाट इज इट इंस्टाग्राम्स 80s ट्रेंड प्रॉम्प्ट इज हार्मिंग द एनवायरनमेंट कहा जा रहा है एवरी एआई जनरेटेड इमेज फ्रॉम 80s मेकओवर्स टू गिबली पोर्ट्रेट्स इट नीड्स मैसिव कंप्यूटिंग पावर बिहाइंड द सीन्स ऑफ कोर्स कुछ चंद सेकेंड लगते हैं जनरेट करने के लिए इमेज लेकिन वो इमेज जनरेट करने के लिए हैवी कॉस्ट लगती है ऑन एनर्जी हंग्री डेटा सेंटर्स वाटर इंटेंसिफाई कूलिंग सिस्टम्स होते हैं हार्डवेयर बिल्ट जो बना हुआ है रिसोर्स हैवी माइनिंग लगती है और इसीलिए एटलीस्ट एक इंसान 2-3 वर्जन बनाता है कभी कभी 20 वर्जन भी बनाता है एंड व्हेन मिलियंस जनरेट इतने सारे वर्जन ये बहुत कलेक्टिव एनवायरमेंटल कॉस्ट बन जाती है विच इज़ हार्ड टू इग्नोर एंड दिस इज वन मोर थिंग ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम आफ्टर 80s ट्रेंड आपने बनाई नहीं बनाई फोटो लेट मी नो 800-1062 पे कॉल करके ऑफकोर्स फ्राइडे वाइब्स हैं मूड तो ऐसा ही होगा कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है
1: नाम है सेठ सेठ ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
3: UAE द बिगेस्ट लैपटॉप बायबैक इज बैक एट शरफ डीजी This school season, get up to 500 dirhams off on your working or non-working laptop. Ready to supercharge your study sessions? Visit Sharif DG today and elevate your PC experience. T's and C's apply.
4: One Big Ticket brings you many chances to win.
5: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
4: 5 consolation prizes from 100,000 dirhams all the way up to 1 million dirhams.
5: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
4: And 4 weekly electronic draw winners of 25,000 dirhams each.
5: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. T&Cs apply.
7: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 10:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: A bump, a break-in, a hospital bill. Suddenly, insurance really matters. That's when insurancemarket.ae delivers. For claims or cover, call 800-ALFRED.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. इट्स 11th ऑफ सितंबर फ्राइडे एंड व्हाट अ डे टू प्लान योर ट्रैवल एंड ट्रिप्स. बेसिकली एयरप्लेन्स का एड्रेस अब बदल जाने वाला है, बदल भी नहीं प्लस वन ऐड हो जाने वाला है. दुबई इज गेटिंग रेडी फॉर अनदर एविएशन मेगा मूव. बेसिकली दुबई इज अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर DWC एक स्टेप और आगे जा रहा है टू बिकम दुबई इज मेन एविएशन हब. फर्स्ट मेजर फेज जो है दैट इज डिजाइन टू हैंडल 150 मिलियन पैसेंजर्स अ ईयर इन द अर्ली 2030s. एंड जस्ट नॉट दैट, दिस कुड बी द फर्स्ट एवर एयरलाइन टू स्टार्ट शिफ्टिंग पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन फ्रॉम दुबई टू DWC. ऑफकोर्स इवेंचुअल प्लान तो और भी बड़ा है. 5 रनवेज इन कैपेसिटी फॉर अप टू 260 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली. आई एम टेलिंग यू यार, दुबई इज एंड इट्स विजन हार्ट थ्रब है यार, दिल ले जाता है. लेकिन ये आ कब रहा है, शुरू कब हो रहा है, ये दीदार कब होगा इसका? The end of 2027 it is, लेकिन अगले साल ही 5 से 6 एयरक्राफ्ट शुरू हो जाएंगे. लेट्स सी हाउ इट गोज. यू कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ।
3: Hi Girish.
4: Hello.
3: मैं बर्बाद कर दूंगी और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ. Suddenly, Sanjana has become viral. I don't know किसने ढूंढ के निकाला है उन्हें Instagram से.
4: This is way back, but at least a very trending dialogue you mentioned there.
3: तो किया है किसी लड़की ने ऐसे डायलॉग आपके साथ भी शेयर कि मैं तुम्हें बर्बाद
4: कर दूंगी? Lucky. Well, actually, I'm sitting one next to the one who says this pretty often.
3: Oh.
4: This Pragya on the line. You want to say hi, Pragya?
3: Hi.
5: I recently seen this trending everywhere, and I'm vibing with this dialogue.
3: I know, right? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी. जरा recreate करो ना दोनों. मेरे पास तो है ही नहीं कोई बर्बाद करने वाला. You guys still have each other.
4: I'm already getting artists for getting her live on the radio without giving a heads up. I just picked her up outside the house, so.
3: Oh, you guys are dating?
4: Further, well, yes, we are.
3: Oh, very nice.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Brought to you by selfdrive.ae.
6: E11 या E311 पर हो तो आपके साथ पेशेंस काफी ज्यादा लगेगी. E311 पर JVC दुबई स्पोर्ट्स सिटी अलबर्शा साउथ वाली साइड आपको कंजेशन मिल जाएगा. एंड विद दैट सेंट्रल दुबई में बिजनेस बे अलखेल रोड रासल खोर एंड नादल शिबा पर आपको काफी और पेशेंस लगेगी. वाइल एयरपोर्ट वाली साइड एंड अलगरूद वाली साइड भी आपको डिलेज मिल जाएंगे. कहीं और फंसे हो लेट मी नो. कॉल करके 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। अगर आप भी मेरे जैसे हो कि मंडे टू फ्राइडे एकदम फुल चेक करना है, अपना डाइट क्लीन रखनी है, ट्राई करना है, क्लीन तो पूरी नहीं रह जा सकती, लेकिन वीकेंड पे ना दिमाग पर ही हो जाता है कि यार अब तो चीट डे शुरू हो चुका है, चीट वीकेंड शुरू हो चुका है। बट बिफोर यू डू दैट चीट मील, अगर आपको इनडाइजेशन ट्रबल कर रही है, गेट इफेक्टिव रिलीफ नेचुरली विद डाबर पुदीन हरा, जस्ट वन टाइनी पर्ल पैक्ड विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स दैट गिव्स योर स्टमक इंस्टेंट सूदिंग रिलीफ। उसके साथ साथ इट्स पॉकेट साइज्ड एज वेल, पॉकेट फ्रेंडली है, क्विक नेचुरल रिलीफ देगा आपको कहीं भी कभी भी। स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे विद डाबर पुदीन हरा। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन। इट्स आल्सो अवेलेबल ऑन नून मिनट्स, सो इससे पहले आपका इनडाइजेशन
2: लुटपुट गया
1: यहाँ तक चला जाए, आप डाबर पुदीन हरा के साथ सेफ रह सकते हैं। Keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: E11 Al-Ittihad Road पर आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा अराउंड अलकसीज अलनादा अलमजार एंड टुवर्ड्स डेरा. E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर JVC अलबर्शा साउथ के अराउंड आपको कंजेशन मिल सकता है. बिजनेस बे अलखेल रोड टुवर्ड्स रासल खोर एंड नादल शिबा आपको कंजेशन मिलेगा अच्छा खासा. एंड विद दैट अगर आप शारजा वाली साइड जा रहे हैं या फिर एयरपोर्ट वाली साइड जा रहे हैं, कीप दैट एक्स्ट्रा पेशेंस विद यू. कहीं और फंसे हो लेट मी नो 800-1062 पे कॉल करके.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड द सॉन्ग ऑफ द आवर वाज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae विद 30,000 गूगल रिव्यूज विद अ 4.8 स्टार रेटिंग बिल्ट इन यूएई ट्रस्टेड अक्रॉस यूएई एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट एवरी पॉलिसी इज अ प्रॉमिस केप्ट insurancemarket.ae फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम पर आपको पता है यार मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम इंस्टा हैंडल मुझे भी फॉलो कर सकते हो अवनी आर के पेज पर AVNIY RRR बाकी अब मैं मिलती हूँ आपको 1 to 5 द बिग मिक्स के साथ तब तक फ्राइडे वाइब्स ऑन टाइमलेस सॉन्ग कमिंग अप योर वे ओनली ऑन बिग 106.2 कीप इट लॉक्ड द बीट ऑफ बॉलीवुड

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलखूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटाएगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पांच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गए, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ ना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं डरना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। 106.2

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
1: Kar hi nahi sakte. चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: हाय शिवानी, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी पर सिर्फ म्यूजिक सुनाऊंगी, ठीक है? आपको वो सॉन्ग गेस करना है।
1: ओके।
3: ये गुंगरू टूट गए।
2: ओह माय गॉड, 2 seconds भाई, 2 seconds भी नहीं लिए शिवानी ने। वाओ। देख लो, जनरल नॉलेज भी होती है तब भी इंसान जर्मनी जा सकता है, क्या पता क्या ना पता। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। एग्जैक्टली क्या किया था आपने, बताना फिर से।
1: सिर्फ बिग चेक इन, मेरा नाम भेजा था व्हाट्सएप नंबर पे आपके।
2: और बहुत सारे मैसेजेस शिवानी ने भेजे, इनफैक्ट जब वो टाइप कर रही थी मैंने उनको तभी कॉल बैक कर दिया।
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM द बिग मिक्स विद अवनि, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, that's my song.

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:06।
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: सेप्टेम्बर नहीं, इस मंथ को स्नीजेम्बर बोलना चाहिए भाई। हर कोई बीमार बैठा है बिकॉज ऑफ दिस वेदर चेंज। एंड राइट नाउ द टेम्परेचर इज 38 डिग्रीज व्हिच एक्चुअली फील्स लाइक 50, एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स तो वैसे ही 52% पे चल रहे हैं।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग

0: Anyone can sell insurance when everything's fine. What matters is who shows up when it isn't. InsuranceMarket.ae. Here when it matters. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. इट्स फ्राइडे एंड वीकेंड वाइब्स आ चुकी हैं. थिएटर्स में दो मूवीज रिलीज हुई हैं आज. इट्स अ मूवी क्लैश बिटवीन हेवान एंड लास्ट मैन इन टावर. दोनों ही फिल्म के जो स्टार्स हैं टॉप नॉच हैं. आप दोनों के ही फैन हो. वन इज लास्ट मैन इन टावर. मनोज बाजपेयी की ये फिल्म है जिसमें आपको बोमन ईरानी भी दिखने वाले हैं विद दिव्या दत्ता. एंड हेवान सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार. बट द डुओ आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार. इट्स अक्षय कुमार एंड प्रिया दर्शन. हेवान प्रिया दर्शन की फिल्म है एंड लास्ट उनकी भूत बंगला आई थी. बट ही इज नोन फॉर यू नो हिज हॉरर जॉनरा. लेकिन दिस वन इज अ क्राइम थ्रिलर. दोनों फिल्में हिट होती हैं बॉक्स ऑफिस पर. क्लैश में कौन काम करता है लेट्स सी. लेकिन उससे पहले हैव यू हर्ड अबाउट दैट स्टेटमेंट मनी फॉलोज माई ब्रदर मनी फॉलोज. वेल उस चक्कर में एक और चीज आ गई है जिसको देख के आपको लगेगा यही बोलोगे यार ये क्या किया किसकी बात कर रही हूँ. कमिंग अप योर वे नेक्स्ट इज मनी फॉलोज माई ब्रदर का सॉन्ग रिलीज हो चुका है. क्या सॉन्ग है साथ में सुनते हैं. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ।
6: हाय गिरीश।
7: हेलो।
6: मैं बर्बाद कर दूंगी और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। सडनली संजना हैज बिकम वायरल। आई डोंट नो किसने ढूंढ के निकाला है उन्हें इंस्टाग्राम से।
7: दिस इज वेरी बैक बट एट लीस्ट अ वेरी ट्रेंडिंग डायलॉग यू मेंशन देयर।
6: तो किया है किसी लड़की ने ऐसे डायलॉग आपके साथ भी शेयर कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी?
7: लकी वेल एक्चुअली आई एम सिटिंग वन नेक्स्ट टू द वन हु सेज दिस वेरी ऑफन। This Pragya on the line. You want to say hi, Pragya?
6: Hi.
8: I've recently seen this trending everywhere and I'm vibing with this dialogue.
6: I know, right? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। जरा recreate करो ना दोनों। मेरे पास तो है ही नहीं कोई बर्बाद करने वाला। You guys still have each other.
7: I'm already getting artists for getting her live on the radio without giving a heads up. I just picked her up outside the house, so.
6: Oh, you guys are dating?
7: Well, yes, we are.
6: Oh, very nice.
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata yaar sunna.
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: E11 पर स्लो पैचेस मिलेंगे आपको अराउंड बिजनेस बे, डाउनटाउन एंड ट्रेड सेंटर। अलखेल रोड E44 पर आपको अलकूज, बिजनेस बे एंड रासल खोर वाली साइट पर कंजेशन मिल सकता है। E311 पर दुबई शारजा बॉर्डर, पर्टिकुलरली अराउंड मोहिजना अलनादा एंड द शारजा बॉर्डर, आपको वहां पर भी कंजेशन मिलेगा। कहीं और फंसे हो, लेट मी नो 800-1062 पे कॉल करके।
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
11: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मनी फॉलोज माय ब्रदर मनी फॉलोज दिस स्टेटमेंट अगर आपको लगता है कि आपके जहन से जा चुकी थी ये ट्रेंड पर थी अब नहीं है. रवि किशन जी ने कहा था उनको ये भी लगने लगा था दैट वो नेशनल क्रश बन चुके हैं. पर क्या आपको ये वाला गाना याद है? वेरी ओल्ड सॉन्ग सुरजीत बिंद्रागिया का एंड क्योंकि मैं पंजाब की पली बड़ी हूँ तो ये गाना तो मतलब इनबिल्ट है मेरे में. लेकिन मैं इस गाने की बात नहीं कर रही हूँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ दैट इज मनी फॉलोज माई ब्रदर.

लड़गी। एक स्टार्स रवि किशन, ये गाया भी रवि किशन ने है। This is the revised version. Oh my God. Surjeet Bindragia ने वापस ये गाना बनाया है Money Follows My Brother with of course रवि किशन, जो ये स्टेटमेंट के यू नो करता धरता है। What do you think about this song? It's so funny, it's so entertaining, वो that is for sure. लेकिन what do you think about this song Money Follows My Brother? अगर आपने सुना है यहाँ पर अभी मेरे साथ 800-1062 is the number, do call me here. हम साथ में मैनिफेस्ट करते हैं मनी फॉलोज माई ब्रदर, मनी फॉलोज। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. इट्स फ्राइडे एंड बच्चों के लिए भी यार होता है ना कि अब तो दो दिन की छुट्टी है, मजा करेंगे. लेकिन जब भी बच्चे बेचारे सुबह सुबह उठ के ना स्कूल जाते हैं, ऑल दी फील इज
2: जेड़ा नशा नशा तेरी अखा विचों आवे मैनू.
1: नींद नींद कहते हैं उसे. एंड आई एम श्योर यू नीड अ स्मूदर राइड टू योर स्कूल. सो नाउ यू कैन गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम पर मंथ. फ्लैट रेट फॉर द ईयर. जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न. सो बेसिकली स्कूल जाते हुए अब खुशी कुछ अलग चमकेगी. कीप इट लॉक टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Action!

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You insure your car. What about the person driving it? Protect what matters most with health insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड वीकेंड आते ही ना हमारा मन और दिमाग जो है ना यहाँ पहुँच जाता है. द रोड ट्रिप सीन्स इन दिस सॉन्ग. मन करता है यार हम कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे. वेल आई नो कि आप कब जा सकते हो टू दिस ऑल एक्सपेंस पे ट्रिप. बात कर रही हूँ मैं बिग चेक इन टू जर्मनी की.
3: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: वेल अगर आपको चलना है हमारे साथ ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल. खेलेंगे एक इंटरेस्टिंग सी गेम विच इज कॉल्ड बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी. एक म्यूजिक सुनाऊंगी आपको और आपको उस म्यूजिक से सॉन्ग गेस करना है. सो इफ यू रियली थिंक यू आर अ गुड बॉलीवुड बफ 0543091062 इज द व्हाट्सएप नंबर. वहां पर बिग चेक इन स्पेस योर नेम टाइप करो. क्या पता आप जीत जाओ ये बिग चेक इन टू जर्मनी.
3: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni. On Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग चेक इन टू जर्मनी एंड आज मैंने कॉल किया है रिचा को. हाय रिचा.
2: हाय अवनी, हाउ आर यू?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तैयारी हो गई आपकी जर्मनी की?
2: चल रही है.
1: ओके, जर्मनी से पहले मैं पूछती हूँ, वीकेंड की तैयारी हो गई है आपकी?
2: हाँ, वो सॉर्टेड है.
1: बॉलीवुड फिल्म देखते हो?
2: हाँ, देखती हूँ.
1: अगर आपको खुद को बॉलीवुड बफ बताना हो, रेट करना हो 1 to 10 में, कितना रेट करोगे?
2: 7.5.
1: ओके ओके, तो मैं आपको एक गाने का म्यूजिक सुनाऊंगी, आपको गेस करना है वो सॉन्ग क्या है, टाइटल ऑफ द सॉन्ग गेस करना है. कर पाओगे?
2: हाँ, ट्राई करूंगी पक्का.
1: ओके, देन लेट्स स्टार्ट. एनी गेसेस?
3: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स.
1: अब तो पता लग गया होगा.
2: हाँ, अब पता चल गया. दिल धड़काए, लड़की आंख मारे.
1: आंख मारे, दैट इज एक्चुअली करेक्ट. 7.5. खुद को आपने हल्के में ले रखा है, बताओ.
2: सही बात है, ऐसे रखना भी नहीं चाहिए
1: ना. या तो आप अंडर प्ले कर रहे थे कि मैं थोड़ा कम बताती हूँ ताकि मेरे चांसेस कम हो रहे हैं
2: ना. वो तो रखना ही चाहिए.
1: आई सी, आपकी स्ट्रैटेजी मैं समझ चुकी हूँ. वेरी नाइस रुचा, वेरी नाइस. ओके, जर्मनी की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, क्या करने वाले जाके?
2: एक्सप्लोर करूंगी, फूड एक्सप्लोर करूंगी, ऑब्वियसली प्लेसेस एक्सप्लोर करूंगी. आई हैव नेवर बीन टू यूरोप, सो इट वुड बी अ ग्रेट चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर द प्लेस इटसेल्फ. सो
1: के ऊपर से आप फूड की बात कर रहे हो मुझसे, ओ गॉड.
2: वो भी चलेंगी.
1: मेरा ऐसे ही प्यार बढ़ गया आपके साथ.
2: मेरा आपके लिए पहले से ही है.
1: ओह, सो स्वीट, थैंक यू सो मच रुचा. आपका नाम आज के कॉन्टेस्ट में रजिस्टर हो जाता है. लेट्स सी आप जर्मनी जाते हो या नहीं.
2: ओके, मैनिफेस्टिंग टू विन. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
1: थैंक यू, बाय.
2: थैंक यू, बाय.
1: इफ यू ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट टू बिग चेक इन टू जर्मनी, ऑल यू हैव टू डू इज मैसेज बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

0: 101.2. School's starting soon and we need a car.
1: And books, uniforms, everything.
0: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
2: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
3: The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
4: InsuranceMarket.ae.
5: Hey,
3: Big Traffic. Brought to you by Selfdrive.ae.
6: शेख जायद रोड पर मूविंग ट्रैफिक मिलेगा आपको, बट स्लो पैचेस अराउंड डाउनटाउन एंड बिजनेस बे. अलखेल रोड पर भी आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिल सकता है. अलकूज, बिजनेस बे, रासल खोर पर भी साइड जाते हुए. दुबई मरीना, जेबीआर पर आपको जनरली मैनेजेबल ट्रैफिक मिलेगा, बट ट्रैफिक कैन स्टार्ट पिकिंग अप बिकॉज ऑफ द बीच एरिया. कहीं और फंसे हो, लेट मी नो 800-1062 पे कॉल करके.
3: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड समझो ना सॉन्ग हैज बीन रिलीज द वीवान का. सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया स्टारिंग अनदर फोकलोर जो आने वाली है बहुत जल्द रिलीज होने वाली है. उसका पहला सॉन्ग आ चुका है 25th of September. इट इज इन थिएटर्स. लेकिन द सॉन्ग इज वेरी नाइस. इट्स सो रोमांटिक.

0: कुछ लिखता हूँ।
1: बस ये कोई बोल दे तो मैं कह रही हूँ मेरा वीकेंड, मेरा पूरा वीक बन जाए। वेल द सॉन्ग इज रियली रियली रियली नाइस। द विवान का गाना है ये, नाम है गाने का समझो ना, तमन्ना भाटिया है इसमें, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। तमन्ना भाटिया हमें मुंजिया में दिखी थी ऑफकोर्स विद आज की रात सॉन्ग, लेकिन इसमें मेन लीड कर रही हैं एंड पूरी मूवी जो है इनके अराउंड होने वाली है। लेट्स सी ये फोकलोर क्या होती है, कहानी क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। बट लेट्स सी ऑन 25th ऑफ सितंबर, अंटिल देन कीप इट लॉक्ड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:06। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: exactly यार, दिल ही तो है. अब ब्रेकफास्ट में बोल रहा है कि पिज्जा खाना है तो खाना है ना यार.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड मंडे टू फ्राइडे, एक्चुअली फ्राइडे भी आप डिलीट ही कर दो, मंडे टू थर्सडे जितना मर्जी डाइट क्लीन डाइट फॉलो हो जाए, लेकिन वीकेंड का मूड ऑन होते होते ही ना चीट मील्स शुरू हो जाते हैं. अब क्या करें, हैं ना दान थोड़े से हम. घर तो ठीक है, लेकिन आप पहले कॉल पर आइए, बिकॉज वी आर गोना प्ले खाओ पियो ऐश करो. जहाँ पर मैं खेलूंगी आपके साथ एक फूड गेम, एंड इफ यू थिंक यू आर अ बेटर एंड अ बिगर फूडी देन मी, एक ये गेम खेलते हैं. लेट्स सी इसमें आप सही डिश, अपनी वाली डिश पर टिक पाते हो या नहीं टिक पाते हो. फिर मेरी तरह खाने की डिशेस देखते ही इधर उधर भाग जाता है मन, नादान बन जाता है. 800-1062 पे कॉल करो मुझे, गोना प्ले खाओ पियो ऐश करो विद यू. खाना नहीं खाया है तो भूख लग जाएगी, और खा चुके हो तो डबल भूख तो लग जाएगी. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 mein hu Avni aapke saath, and it's the time we play. Let's see who's in the call. Hello.
2: Hello.
1: Hi, कौन बोल रहा है?
2: Hello, मैं अनिरुद्ध बोल रहा हूँ.
1: Hi अनिरुद्ध, खाना खा लिया आपने? लंच कर लिया?
2: हाँ यार, कर लिया मैंने.
1: क्या खाया आज?
2: मैंने सैंडविच खाया.
1: सैंडविच? ओ गॉडी, आप भी मेरे जैसे हो गया. घर से बाहर रहने वाले तो कुछ नहीं मिला तो सैंडविच खा लिया.
2: सेम सैंडविच खा रहा हूँ पिछले दो महीने.
1: ओह माय गॉड, सेम सैंडविच? नहीं यार, सॉरी टू, मैं अगली बार से बना दूंगी क्योंकि मैं सेम सैंडविच रोज नहीं खा सकती. कौन सा सैंडविच खाया है आपने?
2: मैंने खाया है वेजी सैंडविच.
1: वेजी सैंडविच, चलो ठीक है, फिर हम वेजी सैंडविच से शुरू करते हैं. ठीक है, ओके. सो व्हाट वुड यू चूज, अ वेजी सैंडविच और अ चीज सैंडविच?
2: वेजी सैंडविच.
1: वेजी सैंडविच या फिर आलू वाला सैंडविच?
2: वेजी सैंडविच.
1: व्हाट, वेजी सैंडविच या फिर पाव भाजी सैंडविच?
2: पाव भाजी सैंडविच.
1: ओके, पाव भाजी सैंडविच या छोले भटूरे?
2: छोले भटूरे. ओके,
1: छोले भटूरे या आलू कुलचा?
2: आलू कुलचा.
1: आलू कुलचा या बटर चिकन?
2: आलू कुलचा.
1: ओके, आलू कुलचा या पिज्जा?
2: पिज्जा. पिज्जा.
1: पिज्जा. पिज्जा या पास्ता?
2: पिज्जा.
1: पिज्जा. पिज्जा या गार्लिक ब्रेड?
2: पिज्जा ऑब्वियसली.
1: Obviously, इसमें obvious क्या था? मैंने तो आज सुबह दोनों खाए हैं, pizza and garlic bread. Okay, pizza या फिर last गुलाब जामुन?
2: अब इतना सब खा लिया तो गुलाब जामुन.
1: That's actually a true foodie. Thank you so much, अनिरुद्ध. अभी अभी आपने वेजी सैंडविच जो खा लिया, उसके बाद क्या खाने वाले हो?
2: अभी तो शाम को देखते हैं, शायद पिज्जा या गुलाब जामुन.
1: अब भूख लग गई होगी ना? अनिरुद्ध जिनको मिलती है ओपन मूवी टिकट्स. अगर आपको भी हमारे साथ खेलनी है, खाओ पियो ऐश करो, ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अस 800-1062 पर. अंटिल देन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: कैसी लड़की, इस देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 37 degrees out there, but it actually feels above 50 degrees because of the humid levels. It has crossed 63% as of now. It's very humid outside. Dhyan rakho, pani wani peete raho.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Radio, the beat of Bollywood.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड्स भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड 2026 में कोई रह गया कि सारे के सारे 80s में वापस जा चुके हैं? बता दो, बिकॉज आफ्टर दिस 80s ट्रेंड, Instagram's 80s ट्रेंड प्रॉम्प्ट इज हार्मिंग द एनवायरनमेंट. ये ट्रेंड पर चल रहा है. एंड व्हाई इज दैट सो? एवरी AI जनरेटेड इमेज फ्रॉम 80s मेकओवर्स टू गिबली पोर्ट्रेट्स, इसमें मैसिव कंप्यूटिंग पावर लगती है. एंड विद दैट, चंद सेकेंड्स में जो आपकी इमेजेस जनरेट होके आती हैं, दैट कॉस्ट ऑन एनर्जी हंग्री डेटा सेंटर्स, वाटर इंटेंसिफाइड कूलिंग सिस्टम्स, एंड जो हार्डवेयर बना हुआ है दैट इज़ वेरी रिसोर्स हैवी माइनिंग, वो भी लगता है. और उसके साथ साथ यार, अब एक प्रॉम्प्ट तो बनाते नहीं हो, दो तीन वर्जन बनाते हो, एंड कई लोग तो 20 वर्जन भी बनाते हैं. अब सोचो, व्हेन मिलियंस जनरेट 5, 10, even 20 वर्जन ऑफ दैट स्टोरी, जो कल खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, कलेक्टिवली उसको एनवायरनमेंट पे काफ़ी बड़ा कॉस्ट बन रहा है. दैट इज़ वेरी हार्ड टू इग्नोर. वेल, ये ट्रेंड पर चल रहा है फिलहाल इंस्टाग्राम पर. आप मुझे बताओ कॉल करके 800-1062 पर, क्या आपने 80s ट्रेंड फॉलो किया या नहीं किया? अंटिल देन, कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae.
4: Insurancemarket.ae.
5: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
3: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने पूछा था कि अगर आपने 80s वाला ट्रेंड फॉलो किया है या नहीं किया है। हाय हेलो।
2: हाय अवनी।
1: कौन बात कर रहा है?
2: मोहित।
1: यस मोहित बताइए।
2: नहीं मैंने फॉलो नहीं किया वो ट्रेंड को।
1: वाओ हैट्स ऑफ। मतलब ये कोई मिलियन में से एक इंसान निकलता जिसने फॉलो नहीं किया है।
2: क्योंकि हमको पता ही नहीं 80s में हम क्या कर रहे थे। बॉर्न हमारा 92 का है, हमको पता ही नहीं 80s में क्या कौन सी क्या थे, वही पता नहीं है हमको। एक चीज है, अगर इसमें कुछ ऐसा होता ना कि हम 80s में जाके कुछ कर सकते थे तो हाँ थोड़ा सा गोल या कुछ जमीन वमीन खरीद के वापस आ जाते थे।
1: ओह माय गॉड, मैंने भी एग्जैक्ट सेम चीज कहा था कि अगर 80s ट्रेंड में वापस जाना ही है तो फिर मैं यार 1000 bucks की मैं लैंड खरीद लेती हूँ।
2: कुछ ना कुछ लेके आते तो इधर जाके 5-10 minutes में खरीद के वो सब करके वापस आ जाते तो इधर अभी हम लोग कुछ ना कुछ तो होते।
1: अच्छा मोहित नहीं वही सेम क्वेश्चन है मेरा, अगर आपको जनरली 80s में वापस भेज दिया जाए तीन चीजें ऐसी क्या करोगे आप?
2: तो चीज यही बोली कि कुछ ना कुछ लेके आ जाते कुछ करते।
1: ठीक है
2: मतलब थोड़ा इतना सेविंग्स कर लेते जो अपने पीछे की जो जनरेशन आती उन लोग का प्रॉफिट हो जाता कुछ ना कुछ।
1: ठीक है अग्रीड।
2: थोड़ा उसी टाइम थोड़ा एजुकेशन कर लेते तो शायद पिछले हम लोग अपने बेटे को बोल सकते उस टाइम पे। मेरे पापा मेरे को बोलते थे भाई मैं मैट्रिक पास हूँ। अब मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था मैट्रिक मतलब, तो बोलते कि उस टाइम पे मैट्रिक मतलब बहुत ज्यादा होता है।
1: यस यस यस ओ गॉड
2: ऐसा
1: सही विजन है यार मोहित आपका, आई एम इम्प्रेस्ड।
2: तो पढ़ाई कर लेते तो शायद कुछ बन जाते कुछ कर जाते। तो हम भी अपने बच्चे को बोलते कि भाई मैंने ये जमाने में ये पास किया था, तुम अभी कुछ नहीं कर रहे।
1: वेल हर 80s 90s 2000s का एक ट्रेंड होता है एंड हर इरा में हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना मोहित, तो अब कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, वही कर सकते हैं। फ्राइडे को यही मोटिवेशन चाहिए तभी मंडे को वापस काम पे हो पाएंगे।
2: मंडे को तो जाने का मन नहीं करता ट्रैफिक, अगर पार्किंग से गाड़ी निकालो तो भाई पता नहीं क्यों निकाली ऐसा सोचते हम लोग।
1: थैंक यू सो मच मोहित फॉर कॉलिंग, यू मेड माय डे।
2: थैंक यू ओनी।
1: ओके बाय। You tell me, call karke 800-1062 par if you have followed the 80s trend or not. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: मॉडरेट ट्रैफिक मिलेगा आपको अराउंड बिजनेस बे डाउनटाउन एंड ट्रेड सेंटर E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर आपको ज्यादा ट्रैफिक मिल सकता है अराउंड इंटरनेशनल सिटी एंड मिर्दिफ D63 उमसुकेम यू गॉट अ पैची ट्रैफिक अराउंड अलबर्शा दुबई हिल्स एंड JVC अगर कहीं और फंसे हो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड द सॉन्ग ऑफ द आवर वाज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae विद 30,000 गूगल रिव्यूज विद अ 4.8 स्टार रेटिंग बिल्ट इन UAE ट्रस्टेड अक्रॉस UAE एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट एवरी पॉलिसी इज अ प्रॉमिस केप्ट insurancemarket.ae फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम पर आपको पता है यार मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम इंस्टा हैंडल या फिर आप मुझे भी डीएम कर सकते हो अवनी यार के पेज पर AVNI Why triple यार अब फ्राइडे खत्म हो गया यार मेरा ऑलमोस्ट वीकेंड एंजॉय करने दो ना वेल वीकेंड पर आप कहाँ कहाँ जा सकते हो माय रिकमेंडेशंस बताऊंगी मैं आपको बिग रिकमेंड्स पर संडे को 3 से 6 अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉल

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:12।
2: Bollywood.

0: बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूज गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते है।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
4: School's starting soon and we need a car.
5: And books, uniforms, everything.
4: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
6: And what if we need it for a short while?
4: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
0: रास्ता ही नहीं निकल पा रहा है। Pumpkin spice latte आ चुकी है बाजार में, बट मौसम नहीं आया। इट्स 38 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 59% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: anything from insurancemarket.ae and get My Alfred Premium free for 1 year. Call 800-ALFRED.
1: The Big Trill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, Friday ki sham hai. We are bringing in the weekend. Mahal hi alag hota. I think Friday evenings are happier than Saturday evenings because you know, do din ki chutti hai. Actually, sabki nahi hoti hai. Mujhe aaj hi pata chala. Batta chhod, agar aapki bhi hai, be very, very grateful. Filhal, while you're heading back home, every single evening hum yahan pe mahal jamate hain, mehfil lagate hain, and non-singers ko platform dete hain apni awaaz se.
1: Karaoke.
2: लोगों को एंटरटेन करने का, अगर आप गाना गाने का शौक रखते हैं, आई एम श्योर रखते ही होंगे, बिकॉज देयर इज वन थिंग दैट वी देसीज लव, वी लव फूड एंड वी लव म्यूजिक. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी सिंगल देसी पर्सन दैट आई नो जिसे गाना गाने का शौक नहीं है. अगर आप अपना टैलेंट बाथरूम तक रखते हैं तो उसे दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी. अभी अभी आपने गाना सुना आंखों से तूने 2.0. द गाना ओरिजिनली इज फ्रॉम द मूवी गुलाम. And the album was fantastic. Of course, Aamir Khan ne bhi ek gana gaane ki koshish ki thi. But I'm not talking about that song. This album was amazing. And Gulam se hi Aasham.

ये गाना है थोड़ा सा टफ है, बट पीपल हु लव 90s के म्यूजिक एंड 90s के गाने उनके लिए इजी होने वाला है. अगर आपने गेस कर लिया है ये कौन सा गाना है एंड आप गाना चाहते हैं, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Friday ki sham hai, we are karaoke-ing while you're heading back home. You're in the jam, we jam here. And joining us is Samrit. Beautiful name, Samrit.
2: Thank you.
1: Iska matlab kya hai? Amrit jaisa, right?
2: It means rich.
1: Rich.
2: Prime and all that.
1: Oh, very nice.
2: Yeah, but I'm not that rich.
1: कोई बात नहीं, नाम है तो फिर हो ही जाएगा. वैसे मेरा भी सरनेम काफी रिच है. लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी बिल्स जो है वो मैं पे करूं, बट मैंने कहा सिर्फ सरनेम है, कोई लेना देना नहीं है विद द बिजनेसेस. फिलहाल समृत करते क्या हैं आप?
2: वर्किंग एट एन इंजीनियरिंग कंपनी ओवर हियर.
1: वेरी नाइस. आर यू एंजॉयिंग द जॉब?
2: या या, आई एम एंजॉयिंग द जॉब एक्चुअली. इट्स माय डे ऑफ, सो आई एम जस्ट ट्रैवलिंग टू अबू धाबी टू मीट माय ब्रदर.
1: Oh, you have a day off on Friday?
2: Yeah, usually I'm like 2 days working, 2 days off, 2 days working, 2 days off.
1: अब इससे ज़्यादा और क्या rich चाहिए life में? हो rich यार आप तो हो. 2 days yeah. working, 2 days off. Touch wood, नज़र ना लगे. फिलहाल, do you enjoy singing? Do you like singing?
2: Yeah. Not that much, but I can try. So I'm from Kerala, but I love Hindi songs. I love Bollywood.
1: So. But you've got an amazing voice. So I have high hopes and expectations.
2: Oh,
1: so अब समृद्ध की आवाज़ में सुनेंगे.
0: Karaoke.
1: All right, Samrit, here's your track.
2: Papi hai tera hi jadu jo mere dil pe chhaane laga. Jadu hai tera hi jadu to mere dil pe chhaane laga. मीठा सा
1: क्या किया तूने, मीठा सा दर्द होने लगा,
2: होने लगा. ये क्या हुआ, पहले ना ऐसा होता था. मैं होता मैं जानू ना. Okay, that's all I know.
1: कोई मुझे इतना बता दे, घर का समृत के मुझे बता दे. बड़ा अच्छा गया समृत, वेरी नाइस. सो यू टोल्ड मी यू फ्रॉम केरला. केरला इज नोन फॉर सम अमेजिंग मॉनसून, अमेजिंग रेन्स. एंड इफ यू रिमेम्बर दिस सॉन्ग, इट वाज पिक्चराइज्ड इन बारिश. सो हैव यू रिक्रिएटेड दैट मोमेंट बाइक पर कभी केरला की बारिश में?
2: Yeah, but so I can tell you off the call, but not on radio.
1: Oh, so you have recreated. So I have to say the cops there are very, very friendly, because it doesn't really happen in India often.
2: Yeah, but still now I think India has changed a lot. It's all modernized. So I think, yeah.
1: Oh, so you recreated this moment recently?
2: No, like maybe like a year back or something.
1: Not
2: a year or two back.
1: TMI, yeah. But I'm enjoying it. So is that person with you? Is she still doing the jadu?
2: No. We already broke up.
1: Very nice. Mujhe laga hi tha.
2: Well, we both were the red flags.
1: Very nice. I like this acceptance, but I'm very surprised you recreated this moment in India, because I've not been in India for a while, but people know ke ek zamane mein jab wahan pe Oyo nahi tha, to let's not go there. You sang beautifully. You have a great evening, and thank you so much for singing this song for us, Samrit.
2: Thank you. Bye.
1: Yahi hai karaoke. Gaano ke saath saath dil ki baatein bhi bahar aati hain. Agar aap bhi gaana gaana chahte hain, give me a call. Call 800-1062 par.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Vamsi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: I have just realized कि देसी शादियों में मैक्सिमम कलेश खाने को लेकर होता है. कभी मटर पनीर में पनीर कम होता है तो दूल्हा नाराज हो जाता है. कभी लेग पीस लड़के वालों को ज्यादा मिल जाता है तो लड़की वाले नाराज हो जाते हैं. अब एक कहानी आ रही है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, द वीडियो इज गोइंग वायरल, जहां पे दूल्हा जो है वो काफी नाराज हो गया एंड ही कॉल्ड ऑफ हिज वेडिंग मिड वे बिकॉज ही रियलाइज दैट द ब्राइट साइड हैज रन आउट ऑफ रसगुल्लाज, अ पॉपुलर मिठाई, एंड ही वॉज वेरी वेरी एंग्री क्योंकि बरातियों को रसगुल्ले मिल ही नहीं पाए. ही रिफ्यूज टू कंप्लीट द फाइनल रिचुअल्स एंड वॉकड आउट विद हिज फैमिली, लीविंग एवरीवन एट द वेन्यू इन अटर शॉक. एंड दिस हैपेंड ओवर अ मिसिंग प्लेट ऑफ रसगुल्ला. मैंने कहा ना, देसी शादी में कंपैटिबिलिटी हो ना हो, केमिस्ट्री हो ना हो, खाना पूरा होना चाहिए, वरना शादियां जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं.
2: No. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudarpajam Mangalam Pundari.
1: Come back, we're playing this fun game. It's called the 5-second rule. आपको मिलते हैं 5 second. मैं आपको देती हूँ कुछ categories, तीन चीजें बतानी होती हैं 5 second के अंदर. This sounds very very easy, but ये उतना ही difficult है जितना बरातियों को convince करना कि रसगुल्ले खत्म हो गए थे.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:07।
2: Bollywood.

0: Introducing Alfred Coins, the new way insurancemarket.ae rewards you. Buy insurance. Earn Alfred Coins. Enjoy rewards. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, this is the Big Thrill. Mansi, we're playing the 5-second rule. Joining us is Zeenath. Hi, Zeenath.
3: Hi, Mansi. How are you?
2: I'm good. Where are you stuck? Don't tell me Sheikh Zayed Road.
3: No. I'm close to Motor City. Just gone for my vehicle testing. Now heading home.
2: Arey wah, nahi gaadi liya aapne?
3: Nahi, nahi, renewal hai.
2: Achha. Filhal, we'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories, Zeenath. Teen cheeze batani hai. 5 seconds ke andar. All the best.
3: Oh.
1: 5-second rule.
4: Oh, yeah.
2: Quickly name 3 things that are green in color and you can eat.
3: Leafy vegetables, spinach, peas, and
2: time cut them. Almost there. Fatafat, thoda aur fast. 3 food items that start with the letter B.
3: Broccoli, beetroot.
2: Bread, banana, biscuit. Bahut sare. 3 रवीना टंडन की मूवीज. अच्छा, 3 ऐसी बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में हम, द वर्ड हम आता है.
3: हम आपके है कौन, हम तुम, हम आप, हम साथ साथ है.
2: नॉट बैड. 3 एनिमल्स जो आप घर पे एज पेट्स रख सकते हो.
3: रैबिट, फिश, डॉग, कैट.
2: अच्छा, 3 ऐसे रीजंस जिस को लेके यू नो यू फाइट विद योर हस्बैंड.
3: हिज टाइम, हिज द वे ही स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन द वॉशरूम.
2: टाइम खत्म हो गया. तीसरा क्या था?
3: द टाइम ही टेक्स इनसाइड द वॉशरूम.
2: वो तो एक ही हुआ, बाकी 3 क्या है?
3: एंड लाइक द वे ही यूजेस हिज फोन ऑल द टाइम.
2: यू नो व्हाट दे से राइट अबाउट पीपल, स्पेशली मेन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द वॉशरूम विद देयर फोन.
3: एंड नो,
2: जस्ट गूगल इट. मैं कलेश नहीं कराऊंगी. बट नॉट बैड, हिट और मिस था. बट मोस्ट ऑफ योर आंसर्स आ ही गए थे 5 सेकंड के अंदर. बट बेटर भी हो सकता है. होप यू हैड फन Zeenath.
3: या आई डिड. बिफोर आई थॉट इट्स अ इजी गेम, बट आई
2: डिड. घर जाके आज हस्बैंड से बोलना 3 रीजंस व्हाई यू स्पेंड सो मच टाइम इन द वॉशरूम. 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा. फिलहाल यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, लवली टॉकिंग टू यू. बाय.
3: सेम हियर. बाय.
2: या 5 सेकंड रूल आपने खेलना. एक ही रूल है, मुझे कॉल करना 800-1062 पर.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: फेवरेट हीरोज दैट आई ग्रू अप वॉचिंग केबल टीवी हुआ करता था. जेंजीज आप नहीं मिलेनियल्स समझेंगे कि केबल टीवी पे जो केबल वाले भैया का मन होता था वो मूवी जो है वो प्ले की जाती थी. एंड वेरी ऑफन ही यूज टू प्ले ये दिल लगी, देन मैं खिलाड़ी तू नाड़ी, आरजू ऑल्सो. सो आई वॉच देम टुगेदर ऑन स्क्रीन बहुत ज्यादा ग्रोइंग अप. एंड टूडे मार्क्स द रीयूनियन ऑफ अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान आफ्टर ऑलमोस्ट टू डेकेड्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी हैवान जो आज रिलीज हो चुकी है. प्रियदर्शन की 98th डायरेक्टोरियल माइलस्टोन है. एंड दिस इज सरप्राइज फॉर यू, फॉर ऑल दोज हू सीन द ओजी मूवी जिसका ये ऑफिशियल रीमेक है, आपके लिए सरप्राइज है.
1: तड़पावे साडी जान कट जावे तेरा लाल कगरा, हाय तड़पावे साडी जान कट जावे.
0: आई विल नॉट टेल यू व्हाट द सरप्राइज इज, बट व्हेन यू गो टू द थिएटर यू विल गेट टू सी. कमिंग अप एक और अक्षय कुमार का गाना, आल्सो व्हेन आई कम बैक गिविंग वन ऑफ योर चांस टू फ्लाई विद टीम बिग टू जर्मनी.
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
3: Big 106.2. Yeah!

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: गुड इवनिंग, फ्राइडे की शाम है, वीकेंड वाली फील्स है, वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम, आपको मिलते हैं 5 सेकंड, मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर। फिलहाल गाड़ी रिवर्स करते हुए धर्मेंद्र, होगी रिवर्स?
2: हो गए।
1: तो आप ये कैमरा देख के रिवर्स करते हैं या फिर आप ओजीज है के मिरर से?
2: नहीं, कैमरा।
1: कितने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए?
2: 4 साल।
1: मुझसे पूछो 4 महीने, बट मैं कैमरा नहीं यूज करती हूँ, मैं सिर्फ मिरर से ही गाड़ी पार्क कर पाती हूँ। अदरवाइज बाकी तो मेरी ड्राइविंग, अगर आप बैठोगे तो इंश्योरेंस आपकी प्रीमियम बढ़ा देगा। तो थोड़ा रिक्सी बिहेवियर है। क्या आपका प्लान है वीकेंड का सर?
2: हाँ, कुछ नहीं, अभी गणेश प्रतिष्ठापना रहेगी मंडे को, तो रिलेटेड वही।
1: अच्छा, शॉपिंग वॉपिंग करनी है?
2: यस।
1: वेरी नाइस। फिलहाल आप घर पहुंच गए?
2: हाँ, बिल्डिंग के नीचे बात कर लिया है।
1: बिल्डिंग के नीचे आप मुझसे बात कर रहे हो, घर में मन नहीं लग रहा आपका? चलो खेलते हैं 5 सेकंड रूल, इट्स अ फन गेम, यू गेट 5 सेकंड्स, आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज, धर्मेंद्र 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर, ऑल द बेस्ट।
0: 5 सेकंड रूल। ओह यस।
1: 3 चीजें जो आप घर जाते ही करेंगे।
2: आई विल गेट फ्रेश, आई विल हैव टी।
1: हाँ, टाइम खत्म हो गया। आप अपनी ये चाय खुद बनाते हो? देयर इज समवन एट होम वेटिंग फॉर यू विद?
2: No, wife.
1: अच्छा, 3 ऐसी चीजें जो आपके बारे में आपकी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं है। बोल दो सच। मैं पूरा का पूरा ही नहीं पसंद हूँ मानसी, अब क्या बताऊँ मैं, है ना?
2: नहीं।
1: अच्छा, 3 ऐसी चीजें जिसको लेके आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है। आप ही बोलते हो, मुझे लग रहा है आप बहुत सीधे टाइप के। आप वो दे रहे हो मुझे वाइब के कॉलर का ऊपर का बटन भी बंद है, तो आप ही सॉरी बोलते हो। 3 चीजें जो दही से बनती है।
2: दही से बनती है, दही से ताक बनता है।
1: अरे टाइम भी खत्म हो गया, फटाफट खेलो। 3 अक्षय कुमार की मूवीज। ओए होए होए होए।
2: 20 ओके, खिलाड़ी 23।
1: कितने साल हो गए सर आपकी शादी को?
2: शादी को हो गए 10 साल।
1: 10 साल ना, आप भूल गए हो बोलना, बात करना ही भूल गए हो आप।
0: 5 सेकंड रूल।
1: बहुत ही खराब खेला और फोन भी काट दिया। फिलहाल यही है 5 सेकंड रूल। मैंने कहा ना कि इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट ये इतना इजी है नहीं। अगर आप खेलना चाहते हैं 800-1062 इज द नंबर टू डायल।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:09।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: वो कहते हैं ना, डोंट लेट एनीवन डिम योर शाइन योर स्पार्कल. ये परफेक्ट एग्जांपल है. अ वीडियो इज गोइंग वायरल, ऑलमोस्ट 20 मिलियन व्यूज सो फार. अ ग्रूम कॉल्ड ऑफ हिज वेडिंग जस्ट 7 डेज बिफोर द शादी का दिन एंड द ब्राइड रिफ्यूज टू कैंसिल द नॉन रिफंडेबल वेन्यू. उसने अपने 30 फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेंबर्स को फ्लाई किया टू इटली. शी हेल्ड अ वेलकम डिनर, शी वो हर गाउन, शी वॉक डाउन द आइल लाइक अ क्वीन एंड एंजॉयड द एंटायर रिसेप्शन सोलो. Videos from her no groom wedding are going viral on social media, and this is the ultimate lesson in not letting any of your ex-ooks ruin a good party. Coming up in just a bit, keeping you company until 9, main hoon Mansi.
0: Big 106.2.

0: schools starting soon. And we need a car.
1: And books, uniforms, everything.
0: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
2: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
3: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
4: The Big Chill.
5: All my favorite music in one spot.
4: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
6: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
7: हाय शिवानी, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी पर वो सिर्फ म्यूजिक सुनाऊंगी, ठीक है? आपको वो सॉन्ग गेस करना है।
6: ओके। ये घुंघरू टूट गए।
7: ओह माय गॉड, 2 seconds, भाई 2 seconds भी नहीं लिए शिवानी ने, वाओ। देख लो, अब जनरल नॉलेज भी होती है तब भी इंसान जर्मनी जा सकता है, क्या पता क्या ना पता। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। एग्जैक्टली क्या किया था आपने, बताना फिर से।
6: सिर्फ बिग चेक इन, मेरा नाम भेजा था व्हाट्सएप नंबर पे आपके।
7: और बहुत सारे मैसेजेस शिवानी ने भेजे, इनफैक्ट जब वो टाइप कर रही थी मैंने उनको तभी कॉल बैक कर दिया।
4: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM द बिग मिक्स विद अवनि, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
8: Hey, jaldi hata tera khatana, chal hata, are jaldi hata,
4: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: पैची ट्रैफिक आपको मिलने वाला है शेख जायद पर, मतलब 12 से 20 मिनट का डिले DIFC बिजनेस बे के सामने। हैवी ट्रैफिक नियर MOE सुफू इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स मीडिया सिटी मरीना ऑल द वे टुवर्ड्स JLT, ट्रैफिक ट्रेलिंग अ बिट स्लो दैन द यूजुअल डिस्कवरी गार्डन से फुरजान, ऑल्सो स्लो मूविंग नियर JVC इफ यू टेकिंग द हेसी स्ट्रीट, 18 to 25 मिनट डिले उधर भी। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Alpha.
1: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. Hello. सुन रहे हो ना?
3: Hey.

0: Love your car, not your insurance bill. Find great car insurance at a great price with insurancemarket.ae. Compare, choose, drive. Call 800 Alfred.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: See, if like me, you loved watching television growing up, तो आपने भी ये मूवी देखी होगी कई बारी. बहुत ही underrated सी मूवी है, but मुझे बड़ी अच्छी लगती है. And I think सलमान फैंस को, Pretty Zinta फैंस को भी अच्छी लगती होगी. मूवी का नाम मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको हिंट्स दिए थे एंड मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ. मुझे लग रहा है शायद मैं और आलोक जी सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जिन्हें इस मूवी के बारे में पता है. ऋषभ और परी, दे आर मैडली इन लव. ही इज अ वेरी वेरी रिच चीफ एडिटर एट An advertising agency and बहुत ही dedicated doctor है परी, जो उनकी बीवी है Pretty Zinta. शादी होती है and परी जो है उसका सपना होता है to make a hospital for kids. She gets involved एक accident में and she dies in the hospital. अब परी की आखिरी ख्वाहिश ये होती है that she wants to donate a heart to a patient, धानी. धानी is played by भूमिका चावला. ऋषभ जो है वो बहुत परेशान होता है एंड ही रिफ्यूजेस टू गो ऑन विद द प्लान टू डोनेट द हार्ट, बट लेटर उसकी आखिरी ख्वाहिश समझ के वो ये कर देता है. अब जब भी ऋषभ और धानी आसपास होते हैं, दैट इज सलमान एंड भूमि, इनकी हार्ट बीट सिंक हो जाती है एंड दैट्स वेयर द लव स्टोरी बिगिंस. आई नो राइट, आई नो, बट ये एक अनऑफिशियल रीमेक है. हॉलीवुड में ऐसी एक मूवी बन चुकी है. मुझे बड़ी क्यूट सी लगती थी ये मूवी एंड स्पेशली Pretty Zinta एंड सलमान खान ऑन स्क्रीन टुगेदर एंड ऑफ कोर्स भूमिका चावला एंड सलमान पोस्ते नाम. बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. मैंने भी थिएटर में आई एम श्योर नहीं देखी होगी, मैंने तो घर पे ही देखी थी जब केबल वाले भैया ने लगाई थी. बट व्हाट एन आइकॉनिक आइकॉनिक पेयरिंग. आई थिंक वी वांट टू सी वंस अगेन इन 2026 भूमिका चावला एंड सलमान खान टुगेदर. मूवी का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा, अगर आप भूल गए हैं तो. एंड जिसने भी ये मूवी देखी है आई एम श्योर दे स्माइलिंग. जिसने नहीं देखी है, कुछ नहीं करना है ना, तो बस यूट्यूब पे ढूंढ के ये मूवी देखो एंड बाद में मुझे बताना कि कैसी लगी आपको.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल यहाँ से मेरा गुड बाय कहने का टाइम. मैं आपसे मिलूंगी कल ओवर द वीकेंड. आई कीप यू कंपनी विद द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक, द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन 4 बजे से. एंड दिस इज गोना बी अ पैक्ड वीकेंड बिकॉज मंडे से गणपति जी घर आने वाले हैं. फॉर ऑल दोज, आई एम श्योर जो अपने घर लेकर आते हैं बापा को, तो तैयारियों में लगे होंगे. आई एम वन ऑफ देम. कल मैं अपना डेब्यू करने वाली हूँ. प्लीज मुझे दुआओं में याद रखना. मैं पहली बार बर्दुबई गाड़ी चलाऊंगी. अभी तक मैं इतना दूर नहीं पहुंची हूँ. 5 महीने हो गए हैं बट बर्दुबई वाला कॉन्फिडेंस नहीं है. लोगों ने मुझे काफ़ी डराया है बर्दुबई के बारे में. तो कल अगर आप निकल रहे हैं अराउंड 3-4 बजे शाम को, तो संभल के निकलना बिकॉज वॉकिंग टॉकिंग हजार्ड सड़क पर रहेगा कल. Well, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM it is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. Have a brilliant weekend. Stay right here for the best music. Good night.

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: No noise, just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आप चुम्मी को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ और मैं अपने घर जा रही होती हूँ।